आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 बटाग्राम की इस्लामी नशरियात। हमारे साथ रहिएगा।

लेला बिल्कुल जना। अस्सलाम वालेकुम, मैं जनता सिंह है, आई एम सारा जान। खैर शुक्र दे सारा जान पखैर आले। सलाम भाई, आवाज दे ढेर खोक दे, जख को लाए मां दबाग ना मात दरिक्शे वाला सॉन्ग प्ले का सनम सनम गुल हला दाला सिंगर सॉन्ग कोशिश को डेरा मन ना खुशहाल हो से

वेलकम बैक जनाब, मस्त लग रहा सॉन्ग पूरा देखा ना, लग रहा तड़का बहुत लग रहा। बिल्कुल जनाब, सबसे कॉल्स और सबसे मैसेजेस दादा प्रोग्राम इसे नहीं। अब बिल्कुल जनाब, टीम सबर वालों दा पारा, उजेर वालों दा पारा, चिनन कम पुख्ता ना दया डुम्बे आदा दा जनाब चे टीम सबर वालों काल का होली टीम जेर वालों काल का होली तस तो भाई जुमलो चीता का दरको होली की आप बता सो आकाश आने पर रिपीट के भाई आकाश आने पर दोहरा हुआ है आकाश आने बवा है चिकम अंदाज की माँ वेली भी सही ना ना पता बंदन लगी जनाब तेरा आसान जुम सेंटेंस पे कमजोरी दी ना बहरहाल ससुरेरा मन तुम फल कच्चे खामोशी सर हो रही तुम फल कच्चे गड़न करे एनीवे जनाब सो मैसेजेस बलहार अगले दिन वन बाय वन द प्रोग्राम से जुड़ाओ बिल्कुल जनाब बड़ुंबने मैसेज तुम चाय कर दे वाई जय सलाम वालेकुम संगे ताज भाई तुम आला सिस्टर तो सलाम आई एम नायाब खान नायाब खुर के ससुरे रे से ता मन ना खुशाल रहता हूँ सब सलाम चुकम दे आल सिस्टर तौर से दिले कम चिता महाल रेडियो मन फे मडा से शारे चार प्रोग्राम आउरी ससुरे रे से ता मन ना बिल्कुल जनाब वालेकुम सलाम भाई वही लीवी तेसरा सर पहले मैसेज अगले दिवाई चीज सलाम वालेकुम बाई सिंह है अमिता दवे मुबारक शाह खैर मुबारक शाह जी बोले खुजल शेवे ने सशी भी दीदा से शी मुबारक ही रखो है और हम दिन के लिए बाहर हाल डेरे से तमंद ना बल मैं से जगह लेवा जैस सलाम वालेकुम ताज भाई बखैर राले तासु सिंह गए तुम्हारी तरफ ना आला सिस्टर दा सलाम आई मान साहू ताज भाई तासु न क्वेश्चन को मता सुबह जवाब चिदिया करा कवे क्वेश्चन दा दे

0: बिल्कुल जनाब सलाम खिदमत से सऊदी है जमो उदी शमा हाय
1: अकेले छी ख्वाहिशो नूर कड़ू छी नेता ताऊ कड़मा द पार पर
0: सब द पेज रस रोपन छी न क मैसेजेस वगैरह लगा लिया हम द प्रोग्राम से जुड़ो सही देखे ना
1: तीर संभालेला
0: कॉल दर्द जरूर हो आमू सरा कल कौन के सुख दे जनाब द कम जरे दे हेवी गो फॉर द फर्स्ट कॉल ऑफ द शो जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम कॉल ड्रॉप शो हाय ओह माय एक्स वाई जेड कल बिलाव आवाज न राजी का डेर बदलेगी हां ना डेर बदलेगी माता मड़ा मड़ा खुश देगी सू कुछ बस कॉल मिलाओशी और दगा रंगे आवाज के लिए नाराजी या दगा रंगे कॉल डायरेक्टली ड्रॉप शी सिग्नल इशू हुई नौ दा डेरा ज्यादा बदलेगी दा डेरा बदलेगी मड़ा कहना जी खैर दिमाग कल कल दादा सीखेगी इंसान लग डर खदा की जफा के दरोगों पर अख्तियार के ना